0: Pi R from the Nuncha Radio Silo 89.8 MHz.
1: तरेली संगीत कुंजा प्रस्तुत करता है।

रेडियो एनआरएन 99.1 तीन महीना तिर्नुहोस् सात महीना चलाउनुहोस् क्लासिक टेक को 200 Mbps इंटरनेट सात महीना को लागि मात्र ₹5,700 साथ ही क्यारो टीवी एप में पाउनुहोस् 200 भन्दा बढी HD र SD टीवी चैनल वाईफाई 6 सहित को सुपर फास्ट इंटरनेट र IPTV अब क्लासिक टेक में आज जडान गर्नुहोस् कल गर्नुहोस् 9709184147 शर्तहरू लागू हुनेछन्।

0: तो सिखना संगीत मनोरंजन को अटचाहिनो यो हो पश्चिम चितवन को आवाज सामुदायिक रेडियो चाहिनो चाहिनो चाहिनो 39.8 मेगाहर्ट्ज
1: Bye. DJ Raji. Bakurba.

हमें भी ऐसे पीछे करना अच्छा नहीं लगता, हम भी कल्चर डॉन है, इतने सालों से हिम्मत उतारे हम आज बोल सकते हैं पसंद हो तुम हमें, तुम डिसाइड कर लो।

0: रेडियो स्पाइनो 89.8 मेगाहर्ज तपाईं हाम्रो अटुट स्पाइनो
1: सब्सक्राइब नाउ एन्ड प्रेस द बेल आइकन नेभर मिस एन अपडेट फ्रम टिप्स अफिसियल

0: सफाई आइलेट सुंदे नूंचा रेडियो साइन 89.8 मेगाहर्ट्ज़
1: सहिनो समय सूचक अहिले दिउँसोको 3 बज्यो 83 PM